ये एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। भारत के मरकजी हिजब इख्तलाफ रहनुमा को वोटर फहरिस्तों की एक मुतनाज़ नजरसानी पर एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से मुख्तसर वक्त के लिए हिरासत में लिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को बुध के रोज उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो दीगर हिजब इख्तलाफ कानून साजों के हमराह दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक मखसूस एहतजाजी मकाम की तरफ मार्च कर रहे थे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी ने कहा, ये सब घबराहट का

0: गेटवे है, और अगस्त में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोड़े गिरने और सैलाबी रेले की तबाहकारियों के बाद से दीगर ममालिक से इमदादी सामान की वसूली के मरकज के तौर पर काम कर रहा है। जापानी हुकूमत हिफाजत को बढ़ाने के इकदाम में मदद के लिए 2.85 बिलियन येन या तकरीबन 18 मिलियन डॉलर फराहम कर रही है। नेपाल में जापान के सफीर मायदा तोरू ने जुमेरात को नेपाली फरीक के साथ याददाश्तों का तबादला किया। जापान की वजारत खारजा का कहना है कि यह रकम हवाई अड्डे के ट्रैफिक कंट्रोल टावर की तामीर नौ, इसके हवाई ट्रैफिक कंट्रोल निजाम की तैयारी और दीगर इकदाम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वजारत ने यह भी बताया कि इस साल नेपाल के साथ सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसने मजीद कहा कि वो दोनों ममालिक की दोस्ती को मजबूत करना चाहती है। टोयोटा मोटर ने दो बड़े चीनी गाड़ी साज इदारों के साथ सैफरी की स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद का ऐलान किया है। कंपनी का हदफ दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट में अपनी मुसाबकती सलाहियत बढ़ाना है। टोयोटा ने जुमेरात को कहा कि इसने चाइना FAW कॉरपोरेशन और ग्वांजो ऑटोमोबाइल ग्रुप के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। टोयोटा इन कंपनियों के साथ चीन में दो मुश्तरका मंसूबे चला चुकी है। नए इत्तेहाद के तहत ग्वांगजो ऑटोमोबाइल इस कारोबार का 50% हासिल करेगी, जो फिल वक्त टोयोटा और FAW की मिल्कियत में है। इस तरह ये दोनों मुश्तरका मंसूबे ग्वांगजो की छतरी तले आ जाएंगे। टोयोटा का कहना है कि कंपनियां तहकीक और तरक्की, पैदावार और फरोख्त में तआवुन करेंगी। बज़ाहिर टोयोटा को उम्मीद है कि चीन की इन बड़ी कंपनियों के साथ तआवुन को मजबूत तर बनाकर गाड़ियों की बिजली पर मुंतकली और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अमल को तेज किया जा सकता है। नई गाड़ियों के लिए चीन की मकामी मंडी बदस्तूर जमूद का शिकार है, और मुसाबिकत में शिद्दत के बायस जापानी गाड़ी साजों की फरोख्त में कमी देखी गई है।
1: आखिर में खास खबरों का खुलासा। 2026 का नोबेल अमन इनाम देने का फैसला नावी पिले के नाम किया गया है। रूस में इस तहाजा ने हाईलैंड की हुकूमत और दीगर को बैन अक्वामी फौजदारी अदालत के अहदेदारों को हिरासत में लेने और उनके हवाले करने की दरख्वास्त भेजी है, और गैर मजाज रसाई की बुनियाद पर डेटा में नकबजनी की रिपोर्ट करने वाली जापानी कंपनियों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से आज की अहम खबरें खत्म हुईं।

0: मुझे खुशी है।
1: माइक रास्ता पूछने के लिए एक राहगीर से मुखातिब होता है।
2: अरे सुमिमासेन।
0: अरे सुनिए, माफ कीजिएगा।
2: निंजा हकबुत्सुकान मादे दो इत्तरा ई देसु का?
0: निंजा म्यूजियम तक कैसे जाएंगे?
1: राहगीर जवाब देता है,
3: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस रास्ते पर सीधा जाएं।
3: हकबुत्सुकान वा हिदारी नी अरिमासु।
0: म्यूजियम बाई जानिब है।
1: माइक कहता है,
2: वाकरिमाश्ता।
0: समझ गया।
2: अरिगातो गोजाइमासु।
0: बहुत शुक्रिया।
1: काइटो माइक से कहता है,
3: सा इको।
0: ठीक है, चले।
1: शायद म्यूजियम वहां से ज्यादा दूर नहीं है।
0: जी, स्टेशन से म्यूजियम तक पैदल सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत है, और उस रास्ते पर निंजा से मुतालिक अशिया फरोख्त करने वाली या किराए पर देने वाली कई दुकानें हैं। तो आइए अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
3: माइक नियाउ ने, काक्कोई।
2: उरेशी ना। あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
2: わかりました。ありがとうございます。
3: さあ、行こう。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, निंजा म्यूजियम तक कैसे जाएंगे?
2: निंजा हकबुत्सुकान मादे दो इत्तरा ई देसु का?
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए रास्ता पूछ सकते हैं।
0: निंजा हकबुत्सुकान के मायने है निंजा म्यूजियम, मादे यानी तक, और दो इत्तरा ई देसु का मतलब है कैसे जाएंगे। आज का नुक्ता रास्ता पूछने से मुतालिक है। इसके लिए अपनी मंजिल के मकाम के बाद हरफे जार मादे लगाकर उसके बाद दो इत्तरा ई देसु का लगाएं। इत्तरा फेल इकू यानी जाना की शर्त या शक्ल है। इस जुमले को इसी तरह याद कर लेना बेहतर होगा।
1: तो सामिन सुनिए और दोहराइए।
4: दो इत्तरा ई देसु का? निंजा हकबुत्सुकान मादे दो इत्तरा ई देसु का? निंजा हकबुत्सुकान मादे दो इत्तरा ई देसु का?
0: अब रास्ता पूछने वाला एक मकालमा सुनिए।
3: अनो सुमिमासेन, किनकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देसु का? 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई।
0: और अब इस मकालमे की तशरीह।
3: अनो सुमिमासेन।
1: अरे सुनिए, माफ कीजिएगा।
0: ये अल्फाज किसी को मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
3: किनकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देसु का?
1: किनकाकुजी तक कैसे जाएंगे?
0: किनकाकुजी क्योटो के एक मशहूर मंदिर का नाम है। इस मकालमे में वहां तक जाने का रास्ता पूछा जा रहा है।
3: 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई।
1: 101 नंबर की बस में सवार हों।
0: 101 बान यानी 101 नंबर। बस, बस का जापानी तलफुज है, और नोत्ते फेल नोरू यानी सवार होना की ते शक्ल है। नोत्ते कुदासाई के मायने हुए सवार हों।
1: तो सामिन अब सुनिए और दोहराइए।
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: अब कुछ दूसरे मकामात के नामों के साथ मशक करें। फर्ज करें आप जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका रास्ता भूल गए। आप किसी को नक्शे में अपने होटल के मकाम पर उंगली रखकर दिखाते हुए पूछना चाहते हैं कि इस होटल तक कैसे जाएंगे। इस होटल की जापानी है
4: कोनो होटेल। कोनो होटेल।
0: बात का आगाज अनो सुमिमासेन से करें।
3: अनो सुमिमासेन, कोनो होटेल मादे दो इत्तरा ई देसु का? अनो सुमिमासेन, कोनो होटेल मादे दो इत्तरा ई देसु का?
0: अब फर्ज करें आप क्योटो स्टेशन पर हैं और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म को कहते हैं
4: शिंकानसेन नो होम। शिंकानसेन नो होम।
0: तो सामीन कोशिश करें।
5: अनो सुमिमासेन, शिंकानसेन नो होम मादे दो इत्तरा ई देसु का? अनो सुमिमासेन, शिंकानसेन नो होम मादे दो इत्तरा ई देसु का?
1: उम्मीद है आपने

0: बस जुमला बना लिया होगा।
1: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम आपको दाएं बाएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं। दाएं को कहते हैं मिगी और बाएं को हिदारी।
0: तो सामेईन सुनिए और दोहराइए। मिगी, हिदारी।
1: सीधा जाने को कहते हैं मासुगु। इसे भी दोहरा कर मश्क करें।
0: मासुगु।
1: अगर किसी से कहना हो कि सीधा जाएं, तो कहेंगे मासुगु इत्ते कुदासाई। और अगर दाएं मोड़ने का कहना हो तो फेल मगारू यानी मोड़ना इस्तेमाल करते हुए यूं कहेंगे मिगी नी मगाते कुदासाई।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खास ध्यान दें जिसमें माइक रास्ता पूछता है।
2: माइक निहाओ ने काकोई
3: उरेशी ना あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: ミーヤーのトラベルガイド。अब मियां का सफरी हिदायतनामा। कायतो और माइक ने मिए प्रीफेक्चर जाने के लिए हाईवे बस इस्तेमाल की थी। बस के जरिए सफर में कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये सफर का सस्ता जरिया है। तो आज का मौजू है जापान की हाईवे बसें।
1: हाईवे बसों के जरिए कई मकबूल मकामात तक बराह रास्त जाया जा सकता है। अगर रात की बस से सफर किया जाए तो सोते हुए सफर करने के बाद इस वक्त बचाया जा सकता है।
0: ये बसें ज्यादातर किन मकामात के लिए दस्तयाब हैं?
1: हाईवे बसों के कई रूट हैं। टोक्यो से नागोया, ओसाका और क्योतो जैसे बड़े शहरों के रूट मकबूल हैं। इसके अलावा कोहेफुजी, हाकोने और कुसात्सु ओनसेन गर्म चश्मा जाने वाले रूट भी हैं।
0: इनकी सीट की बुकिंग किस तरह होती है?
1: इंटरनेट वगैरह के जरिए टिकट आसानी से खरीदा जा सकता है। बाद बसों में सीट नंबर तक भी तय किया जा सकता है। लग्जरी बसें कुछ महंगी होती हैं, लेकिन उनमें पांव फैलाने की जगह या अलग कमरे जैसी नशिस्तें दस्तियाब होने के बाद सफर ज्यादा आरामदेह हो जाता है।
0: यानी जापान में मुख्तलिफ इलाकों के सफर के लिए बस एक इंतखाब हो सकता है।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 9 अक्टूबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। नॉर्वे की नोबेल समिति ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए नवी पिल्लई को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। वे इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। रूस के अभियोजकों ने नीदरलैंड्स की सरकार और अन्य से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के अधिकारियों को हिरासत में लेकर उन्हें रूस को सौंपने का अनुरोध किया है। मॉस्को में महाअभियोजक कार्यालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान जारी कर कहा कि अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित आईसीसी के 9 अधिकारियों को सौंपने की बात कही गई है। दिसंबर 2025 में एक रूसी अदालत ने इन अधिकारियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने अकाने और अन्य अधिकारियों को उनकी अनुपस्थिति में 3.5 साल से 15 साल तक की कारावास की सजा सुनाई थी। अकाने की सजा का ठीक से पता नहीं है। मार्च 2023 में आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एक अन्य अधिकारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिसके बाद रूस ने इन अधिकारियों को वांछित लोगों की सूची में डाल दिया था। आईसीसी ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को गैर कानूनी रूप से रूस भेजने का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पुतिन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है। आईसीसी का मुख्यालय द हेग में है। एनएचके ने नीदरलैंड्स के न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता से बात की, जिन्होंने बताया कि 2021 से रूस को प्रत्यर्पण करने पर प्रतिबंध लगा है और नीदरलैंड्स आईसीसी के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के काम का दृढ़ता से समर्थन करता है। प्रमुख कन्वीनियंस स्टोर संचालक लॉसन सहित कई जापानी कंपनियों ने अनधिकृत एक्सेस के कारण डेटा चोरी की जानकारी दी है। लॉसन ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसके 21.5 लाख से अधिक ग्राहकों का डेटा अवैध रूप से एक्सेस किया गया। ग्राहकों के नाम, ईमेल एड्रेस और क्रेडिट कार्ड की जानकारी लीक होने की आशंका है। बिग एको नामक काराओके चेन की संचालक दाइची कोशो कंपनी का कहना है कि एक बिजनेस आउटसोर्सिंग कंपनी में मौजूद मैलवेयर के कारण शायद 87.2 लाख व्यक्तिगत रिकॉर्ड लीक हो गए हैं। इसके अलावा न्यूज़पिक्स की संचालक कंपनी यूजा बेस ने भी बताया है कि कुछ उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी शायद लीक हो गई है। कंपनी के अनुसार ऐसा एक मैनेजमेंट टूल में अनधिकृत एक्सेस के कारण हुआ। तीनों कंपनियों के अनुसार अब तक किसी भी अवैध उपयोग की पुष्टि नहीं हुई है। एनएचके को पता चला है कि जापान का रक्षा मंत्रालय देश की उपग्रह परिवहन क्षमता मजबूत करने के लिए एक सर्वेक्षण और अनुसंधान शुरू करेगा। उपग्रह आधारित सूचना संग्रहण में स्थिरता सुनिश्चित करने में इस पहल से मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का महत्व बढ़ रहा है और अन्य देश अंतरिक्ष के सैन्य उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने ऐसी प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है जो आपात स्थिति में उपग्रह के ठप हुए कार्यों को वैकल्पिक उपग्रहों का उपयोग कर शीघ्र बहाल करने में सक्षम हो। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि वे उपग्रह प्रक्षेपण के लिए रॉकेट को अल्पावधि में बनाने के तरीकों, रॉकेट प्रक्षेपण विधियों और आवश्यक लागत के संबंध में निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। मंत्रालय फरवरी 2027 तक तय करेगा कि किन कंपनियों के साथ काम करना है।
1: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत में मतदाता सूची में विवादास्पद संशोधन के विरोध में हुए एक प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में अन्य विपक्षी सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन स्थल की ओर मार्च करते समय हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। राहुल ने कहा, ये सब घबराहट भरी प्रतिक्रिया है, ये सब डर है, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, मेरी बात याद रखना। समूचे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने पिछले महीने खबर दी थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अन्य आयुक्तों की मंजूरी के बिना मतदाता सूची से संभवतः 13 करोड़ नाम हटा दिए थे। विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उसका आरोप है कि आयुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता सूची में हेरफेर किया। जापान सरकार ने नेपाल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा में सुधार के लिए लगभग 1.8 करोड़ डॉलर की अनुदान सहायता देने का निर्णय लिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए एक अहम प्रवेश द्वार है। साथ ही अगस्त के भीषण मृदास्खलन व बाढ़ के बाद विदेशों से राहत सामग्री प्राप्त करने के केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। जापान सरकार सुरक्षा सुधार उपायों में सहायता के लिए 2.85 अरब येन यानी लगभग 1.8 करोड़ डॉलर उपलब्ध करा रही है। बृहस्पतिवार को नेपाल में जापान के राजदूत मायदा तोरू ने नेपाली पक्ष के साथ दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग हवाई अड्डे के यातायात नियंत्रण टावर के पुनर्निर्माण, हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के विकास और अन्य उपायों के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस वर्ष नेपाल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना को 70 वर्ष हो रहे हैं और वो दोनों देशों के बीच मैत्री मजबूत करना चाहता है। टोयोटा मोटर ने चीन की दो बड़ी वाहन कंपनियों के साथ एक नए त्रिपक्षीय रणनीतिक गठजोड़ की घोषणा की है। टोयोटा दुनिया के सबसे बड़े वाहन बाजार में अपनी स्पर्धात्मक बढ़त को गति देना चाहती है। टोयोटा ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने चाइना FAW कॉरपोरेशन और ग्वांगजू ऑटोमोबाइल ग्रुप के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टोयोटा के इन कार कंपनियों के साथ चीन में दो संयुक्त उद्यम हैं। नए गठजोड़ के तहत टोयोटा और FAW के स्वामित्व वाले कारोबार का 50% हिस्सा ग्वांगजू ऑटोमोबाइल हासिल कर लेगी। इससे दोनों संयुक्त उद्यम ग्वांगजू के अधीन आ जाएंगे। टोयोटा का कहना है कि तीनों कंपनियां अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन व बिक्री में सहयोग करेंगी। ऐसा लगता है कि टोयोटा को चीनी कंपनियों के साथ मजबूत सहयोग के माध्यम से वाहनों का विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण तेज करने की उम्मीद है। चीन में नई कारों के बाजार में ठहराव आ गया है और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच जापानी निर्माताओं की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।